देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

0: अक्षय कुमार। Let's take a selfie now।
1: देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

0: Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. All engine running.
1: है भीगा मौसम, नम सी ठंडी आंधी, लेकिन तुम नहीं हो। तो मैं रो के भीगूं या भीग के रो, फर्क किसे पड़ता है।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

0: is It, your favorite radio station. East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is RK.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: कोई समझा दे घर वाली को बस मैं करें कैसे, कोई समझा दे घर वाली को बस मैं करें कैसे।